एक्स का कावा ओलंगो एम तेनु कुछ अंगवा प्रोग्राम को सब जैसे काल के रातों के कभी तू का कहीं से पंग को सीधे वो लंग जी चंतन को इंगा कमो को है ता अगर सीधे कभी तू का कहीं से मतलब कुछ अंगवा ओलंगो इनको ऐसा दें चिमन का के आ प्रोग्राम को कौन गया अली को वो लंग के मासी दे कौन खान को सुपा आ के वो लंगो एम तेनु चोंग वा कौन गया ते की आखिर tuwin da kamani te mukoi kaw mo wala ngi haji ta ba kwan de ka wa kare me ke safety ka ne ulu ji se ago se de safety o ji mo du lu ge ago se wa ji gen ten chong mo wala ngi sa ko ji se ka ke radu we ali ko abraham mo te ko mo wala mo wa ngi sa ko ji se ke ma ngama so ten du te ngama wala ngi